सुहासिनी सुमधुर भा

सुप्रभात। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है।

0: यह आकाशवाणी सागर है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6ठे चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए $1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस की अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में हर रोज की तरह पहले आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये मातृवंदना। रचना डॉक्टर ललित मोहन की है, संगीत है रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की, संगीत था रमेश इंदु बसु और सरबत हुसैन का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गणपति वंदना, स्वर सुरेश वाडकर का, रचना चंद्रशेखर पांडे की, संगीत शंभू सेन का।

पारंपरिक रचना अभी आप सुन रहे थे स्वर था जूठिका रॉय का। इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं नम्रता नरेंद्र चंचल की रचना। संगीत है सुरेंद्र कोहली का, स्वर है नरेंद्र चंचल का।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:25 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

स्वर ए हरिहरन और साथियों के होंगे। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 से। इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे सुबह 7:10 से। मन चाहे गीत सुनिएगा सुबह 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:45 से। समाचार प्रभात का वक्त होगा सुबह 8 का। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 8:45 से। सुबह 9 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 से। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:05 से। सुबह 11 से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 11:30 से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 2 से होगा। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार दोपहर 2:10 से। दोपहर समाचार का वक्त होगा दोपहर 2:15 का। इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:30 से एक बार फिर से आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इस घंटे की सुर्खियां सुनिएगा शाम 5 से। इसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी हम रेडी करेंगे शाम 5:02 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:45 से। हिंदी में समाचार शाम 7 से होंगे। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण के तहत कार्यक्रमों की जानकारी प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 7:10 से। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 से। रात्रि 8 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संगीत सरिता ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात्रि 8:20 से। समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीत सुनिएगा रात 9 से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11 से। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 से। ये दोनों ही समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की इस सभा का समापन होगा। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर ए हरिहरन और साथियों के होंगे और आज आप सुनेंगे इसका 140वां भाग।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से लूटने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

रामचरित मानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे ए हरिहरन और साथियों के, और आज आप सुन रहे थे इसका 140वां भाग। ये आकाशवाणी सागर है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे 9-2-11 इस फिल्म का गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल थे मजरू के, संगीत था ST परमन का। भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में अगली पेशकश मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों के सुर में, गीतकार मजरू और संगीत है रवि।

0: ये हवा ये नदी का किनारा
1: तारों का रंगी बिचारा
0: कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर।

0: कह रहा है देख गई हो सके तो प्यार कर ये समा मिलेगा फिर न दोबारा।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीत है मदन मोहन का, आवाज है लता मंगेशकर और तलत महमूद की, फिल्म का नाम पॉकेट मार।

रॉकेट मार फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और तलत महमूद की, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, संगीत था मदन मोहन का। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी सागर है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में होंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अभी संस्कृत में समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 MHz पर। 7 बज चुके हैं, पेशे कार्यक्रम सुबह है। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, जिस तरह हम एक कार्यक्रम को अपने दूसरे कार्यक्रमों से अलग अंदाज में पेश करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह हमारी कोशिश होती है दूसरों से अलग दिखने की, दूसरों से अलग कुछ नया कर दिखाने की। और यही कोशिश लगातार हमारे व्यक्तित्व को कहीं ज्यादा आकर्षक बनाती है। लीक से हटकर चलने का अंदाज हमें भीड़ से अलग पहचान देता है। हमेशा दूसरों को आकर्षित करने वाली बात हमें कुछ न कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती रहती है, क्योंकि यही परिवर्तन, यही बदलाव तो हमारे जीवन की एक रास्ता को खत्म करते हैं। और जब सब कुछ बदलता है तो बदल जाता है जीने का अंदाज भी। लेकिन श्रोताओ, बदलते दौर के साथ बदलने की चाहत हम सभी को है, और एक स्तर पर अपडेट होना और सही मायने में जागरूकता के प्रति सचेत रहना तो सही है। लेकिन इस सबके बीच हम न चाहते हुए भी कुछ ऐसी बुरी आदतों को अपना लेते हैं जो धीरे धीरे हमारी जरूरतों में शामिल हो जाती हैं। समय के साथ चलने के नाम पर या दिखावे के लिए हम न केवल अपना कीमती समय खराब करने लगते हैं, बल्कि अपना पैसा भी बर्बाद करने पर उतारू होते हैं, और फिर अपनी एक झूठी छवि या प्रतिष्ठा की खातिर सब कुछ करते हुए बैठे बिठाए तनाव मूल ले लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम अपनी स्वाभाविक सहजता और मौलिकता खोते चले जाते हैं। ऊपरी दिखावे के भ्रमजाल में फंसकर अपने भीतर की ठोस प्रभावशाली शक्तियों को शिथिल करने लगते हैं। फौरी तौर पर तो जमने वाले प्रभाव के आकर्षण में बिना किसी सोच विचार के हम किसी भी काम को पूरा करने के लिए बेताब हो जाते हैं। हमेशा पिछड़ने के डर से भागने लगते हैं, बिना इस बात की चिंता किए हम कहां जा रहे हैं और पहुंचेंगे कहां। इसीलिए थोड़ा ठहर कर, चारों तरफ देखकर, सोच विचार कर अपनी क्षमताओं, अपनी खूबियों का आकलन करें, फिर बढ़ें आगे। थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ होगी। थोड़ा कम होगा लेकिन सारगर्भित, तभी सही मायनों में हम बिल्कुल अपने वास्तविक स्वरूप में अच्छा चिरस्थायी प्रभाव छोड़ सकेंगे, और जिसका संतोष हमें हमेशा ऊर्जावान और तरोताजा बनाए रखेगा।

0: सुबह सुबह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है कम पानी की रबी फसलों की बोनी की जानकारी, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के त्रिपाठी।
2: इस वर्ष अनियमित वर्षा हमारे जिले में हुई है। किसी किसी विकास खंड में 1000 से अधिक मिलीमीटर बारिश हुई है और कुछ

0: विकास खंड हमारे ऐसे हैं जहां पे 500 से 700 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसी परिस्थिति में हमको इस वर्ष रबी मौसम की जो प्लानिंग है वो वर्षा जल की उपलब्धता, या हम ऐसा कहें कि हमारे कुओं में पानी या हमारे जो सिंचाई के साधन हैं वहां पे पानी की उपलब्धता के हिसाब से हम रबी फसलों की प्लानिंग करें। जहां पे मिट्टी हमारी हल्की है, जहां पे सिंचाई कम है, वहां पे हम सरसों की बुआई करें, जिससे हम कम पानी में भी ठीक ठीक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरसों के बाद अगर हम बात करें, जल्दी बोने के लिए अगर हमारी मध्यम भूमि है या काली मिट्टी है, वहां पे अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है तो हम वहां पे मसूर या अलसी की जल्दी बुआई कर सकते हैं। मसूर की तमाम ऐसी किस्में हैं जिनमें उकटा नामक बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, जैसे L4717, L4727, L4729, जवाहर मसूर 3, DPL62, IPL81, IPL316, IPL534, RVL31, RVL11-6, ये सब नई वैरायटी हैं जिनका उत्पादन भी काफी अच्छा है और इनमें कम पानी की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम अगली फसल की बात करें तो उसमें है चना। चना हमारे सागर जिले में काफी बड़े रकबे में होता है और चने में हमको ये ध्यान रखना है, चना और मसूर में खासतौर से, कि जब पर्याप्त नमी हो तभी हम बुआई का काम करें। अगर बुआई करते समय नमी की मात्रा कम है तो आप 2 या 3 घंटे का स्प्रिंकलर चला के खेत में पलेवा करें, जिससे नीचे की नमी में ऊपर का स्प्रिंकलर का योग हो जाए और हमारी जमीन गीली हो जाए। इसके बाद जुताई करें और जुताई करने के बाद लगभग 4 से 5 इंच गहराई पे हम मसूर और चना की बुआई करें। इस गहराई या इससे थोड़ी सी और अधिक 6 इंच तक की गहराई पे भी अगर चना की बुआई करते हैं तो उकटा नामक बीमारी का प्रकोप की संभावना कम रहती है। चना की जो अच्छी किस्में हैं उनमें JG18, JG24, ये थोड़े बोल्ड दाने की हैं, JG52, JG36, JG63, ये छोटे दाने की हैं। इसके अलावा RV जो ग्वालियर की किस्में हैं, RBG202, RBG203, RBG204, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा मानव, पूसा समृद्धि, ये भी नई किस्में हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। चना, मसूर, मटर, जो भी बीज हम बोएं उसकी बुआई के पहले हम फफूंदनाशी दवा से उपचार करें और फफूंदनाशी दवा से उपचार करने के बाद राइजोबियम और PSB कल्चर से जरूर उपचार करें, इससे हमारे उर्वरकों की मांग कम होती है। क्योंकि इस बार कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई है, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा कम होगी, इसलिए वहां पे किसान भाई सीमित सिंचाई वाली किस्में जैसे C306, HI1531, JW3020, JW3211, JW3288 इन किस्मों का उपयोग करें। और जहां पे सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, जहां पे आप 4 या 5 पानी दे सकते हैं, जैसे हमारे मालथोन विकास खंड में, देवरी विकास खंड में, रहली विकास खंड में बारिश 1000 से अधिक मिलीमीटर हुई है, वहां पे हम सिंचित किस्में JW322, JW3382, HI1544, HI1650, DBW303, GW513, GW451 इन किस्मों का उपयोग करें, जो हमारे रोटी क्वालिटी की भी हैं और जिनका उत्पादन भी काफी अच्छा है। तो ये अगर हम इन किस्मों का चयन में ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपको कम पानी में भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, विषय था कम पानी की रबी फसलों की बोनी की जानकारी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर AK त्रिपाठी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उमरिया से लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए, सुखबीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज हैदराबाद में, सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। और प्रदेश में अगले 3 दिन कई संभागों में आंधी बारिश और गरज चमक की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उमरिया जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में राशि भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिले में करीब 144 करोड़ रूपये की लागत के 136 विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। राज्य सरकार ने कल शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 जिलों के कलेक्टरों की नई पदस्थापना की है। तबादला सूची के अनुसार कुमार सत्यम को हरदा, आशीष वशिष्ठ को नर्मदापुरम, आदित्य सिंह को पालाघाट, अंकित अस्थाना को सिंगरौली, अरुण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर, रोहित सिसोनिया को रायसेन और परीक्षित संजय राव झाड़े को शाजापुर का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा पवन कुमार जैन को भिंड, हर्ष सिंह को पन्ना, विवेक कुमार को बुरहानपुर और राजेश कुमार ओगरे को मऊगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि भरत यादव को जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में पराली प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने कहा कि धान की कटाई और रबी फसलों की बुआई के बीच बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र को कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करना होगा।
1: भूपेंद्र यादव जी और मैंने राज्य के विशेषकर एनसीआर से जुड़े जो राज्य हैं, कृषि मंत्रियों अधिकारियों के साथ और विभिन्न विभागों के भारत सरकार के अधिकारियों के साथ की पराली प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा की है। हमने समीक्षा भी की है। एक संतोषजनक बात यह है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में पिछले साल के मुकाबले अगर इसी अवधि को देखा जाए तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन लगातार जागरूकता पैदा करने की और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की मांगों और सुझावों पर चर्चा के लिए कल गुरुवार को संबंधित विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। खंडवा में कल आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह में अभिनेता रघुवीर यादव को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें 5,00,000 रूपये की सम्मान निधि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किशोर कुमार अपने सदाबहार गीतों और बेमिसाल अभिनय से हमेशा लोगों की स्मृतियों से जीवित रहेंगे। उन्होंने बताया कि खंडवा में शीघ्र ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों, उत्पादकों और सप्लायरों के नेटवर्क तक पहुंचकर कार्रवाई की जाए। पुलिस के अनुसार रीवा संभाग में पिछले 18 महीनों के दौरान नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के मामलों में 1,615 आरोपियों को जेल भेजा गया और लगभग 13,17,00,000 रूपये के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे 312 वाहन जब्त किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय कर सप्लायरों पर कार्रवाई करने और नशे की गिरफ्त में आए लोगों के उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR

0: 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: राष्ट्रीय जनता पार्टी
2: डॉक्टर एलमुरुगन ने कहा है कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। राजगढ़ जिले में कल यूनिसेफ की वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बाल संरक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, किशोरों और युवाओं से संवाद कर बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों की शिक्षा जारी रखने और जोखिमग्रस्त बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। प्रदेश में कल से 3 दिन आंधी बारिश गरज चमक का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में मौसम बदलेगा। 15-16 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में जबकि 17 अक्टूबर को जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में बारिश की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवपुरी स्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया। झाबुआ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 37 आवेदकों की शिकायतें सुनी। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए 64 आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आगर मालवा जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु जिले के सभी 636 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सतना जिले में नरवाई और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मिंदौरी में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में कोदो कुटकी की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन कार्य 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं। पीछे मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हसीना मान जाएगी इस फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, लिखा अख्तर रूमानी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश है आप सभी की, एमएलबी रोड ग्वालियर से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसकी पप्पी। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी की ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता की

ऊंचाही गीतों के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं साहिर का लिखा गीत। संगीतकार हैं रवि, आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है अमानत और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा और सुमन। बुढ़ाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से ये फरमाइश लिख भेजी है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमूल मानकर, शुभाताई मानकर और श्लोक और दीपाली की ये फरमाइश है। छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में प्राप्त हुई कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अमानत फिल्म का गीत।

0: सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश खामोशी फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार गुलजार, संगीत हेमंत कुमार का। फरमाइश आप सभी की, हनुमानगढ़ राजस्थान से व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है रज्जाक महमूद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। बागपत उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश है संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया की। रायगढ़ केंदी मुड़ा से ये फरमाइश लिख भेजी है पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह ने। गोपालगंज सागर से इसी गीत को सुनना चाहा है सुनीता, अनीता, ममता, रेखा, सीमा, कमला, राम कुमार और बिट्टू रानी ने। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं खामोशी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: खामोशी फिल्म का गीत आपने सुना। इस समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845, सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई और आइए लौटते हैं मनचाहे गीतों की तरफ। और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। गीत है मजरू का, संगीत राहुल देव बर्मन का है, आवाज है मोहम्मद रफी की। फरमाइश आप सभी की। नेपाल पहले सागर से ये पत्र हमें प्राप्त हुआ। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा, शिवांशु और रमाकांत दुबे का। और इसी गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में प्राप्त हुई गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश, शिखा, प्रीतिशा संधू और मैक्स की। ये फरमाइश है पिंगावाला चौक जलंधर से। और इसे भेजने वाले हैं संदीप मक्कार, ज्योति मन्नत, भरत और कमल साहनी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश लिख भेजी है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से ये फरमाइश है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: दीवाना

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सेहरा, आवाज है लता मंगेशकर की। और इस गीत के लिए व्हाट्सएप फरमाइश में मिली जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़ी की। उत्तम नगर दिल्ली से यह फरमाइश लिख भेजी है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम के अंतिम पेशकश, फिल्म को नाम सेहरा।

आप सुन रहे थे सेहरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फैज अनवर के लिखे गीत के साथ, संगीतकार साजिद वाजिद, आवाज सोनू निगम की, एल्बम दीवाना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दे दे। आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845, सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता और इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश निवेदिता जोशी की रचना है। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, आवाज है शुभा मुदगल की।

0: इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
2: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
3: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी भारती ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मेरे www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,000,000 रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
5: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
4: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
6: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
4: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: PCPNBT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार, त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, NEET JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं ये देवी गीत, कलाकार हैं रामादीन आर्या।

0: पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अंतराल के बाद आइए लोक संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कालीचरण यादव और साथियों के स्वर।

0: ये शर्माने की बात नहीं है। अगर आप आइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से परेशान हैं, तो मिलिए सर्व सुविधा संपन्न श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में, जहां आपको मिलेगी सस्ती दरों पर ऑपरेशन की सुविधा जैसे लेजर और स्टेपलर।
1: श्री सिद्धि विनायक अस्पताल, मेन तिली रोड, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, सागर।
2: गर्मा गर्म 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज, चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
3: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय,
2: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
4: संदेश के बाद लोक संगीत के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है सभी सुनने वालों का। और इस कार्यक्रम में अगला लोक गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज दिन बुधवार को हेलोग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 240845, सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई। इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में अगला लोकगीत आइए सुनते हैं।

इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2408 45। सागर का एसटीडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई। लोक संगीत का कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गणपति सिंह यादव और साथियों के स्वर। सुनते हैं ये देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे गणपति सिंह यादव और साथियों के स्वर सुन रहे थे ये देवी गीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की पहली पेशकश एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा जी के युगल स्वरों में, बोल आनंद बख्शी के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम एक

और आइए चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर प्यारीलाल फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा जी की, बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

और आइए चित्रपट संगीत के कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं साहिर का लिखा गीत। संगीत है राहुल देव बर्मन का, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। फिल्म का नाम द बर्निंग ट्रेन।

द बर्निंग ट्री, ये था चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का आखिरी गीत इस फिल्म से। आभासी थे किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल थे साहिर के, संगीत था राहुल देव बर्मन का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: फिल्मों में हम हीरो हीरोइंस को एक से बढ़कर एक सजीली पोशाक पहने हुए देखते हैं और कभी भी हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन पोशाकों को डिजाइन कौन करता होगा, कहानी और पटकथा के अनुरूप इन वेशभूषाओं को कौन व्यवस्थित करके हीरो हीरोइन के लिए तैयार करवाता होगा। ये काम कॉस्ट्यूम डिजाइनर का होता है और आज एक बहुत ही मशहूर और महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं बातें भानु अथैया की।
1: आज कल तेरे मेरे

0: बराबर हो गई।
1: आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने भानु अथैया का नाम लिया और उसके बाद गाना बजा फिल्म ब्रह्मचारी का, आखिर ये माजरा क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने में मुमताज ने जो ऑरेंज कैंडी कलर की घुटनों तक प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने डिजाइन किया था। और कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि इस गाने की जो शानदार कोरियोग्राफी थी उसमें थिरकने में मुमताज को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो सजीले बांके नौजवान शम्मी कपूर के साथ थिरकते हुए

0: मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: बानो अथैया की डिजाइन इस ड्रेस में मुमताज की शोख अदाओं ने लोगों का दिल चुरा लिया और हर जबान पर चर्चे आ गए। हिंदी फिल्मों का ये एक ऐसा गाना है जिसे हम कभी भी और कहीं भी देखना और सुनना पसंद करते हैं। दरअसल मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर इस ड्रेस की डिजाइनर बानो अथैया की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा साल 1929 की तरफ, महाराष्ट्र का शहर कोल्हापुर। यहां एक बालिका ने 28 अप्रैल 1929 को जन्म लिया। नाम रखा गया भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय। जी हां, भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय, क्योंकि पिता का नाम था अन्ना साहेब और माता का नाम था शांताबाई राजोपाध्याय। अपने माता पिता की 7 संतानों में भानुमती तीसरे नंबर पर थी। आजादी के पहले का दौर था, लड़कियों की शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, पर भानुमती के माता पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। उसकी रुचियों को देखते हुए और उसके टैलेंट को देखते हुए आगे चलकर भानुमती को भेजा गया मुंबई जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की शिक्षा लेने के लिए। यहां से भानुमती गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएट हो गई। जरा सोचिए कि समय कैसी करवट लेता है। बचपन में माता पिता ने देखा कि भानुमती रेखाचित्र बनाती हैं। आजादी के पहले का समय था तो माता पिता ने कहा कि तुमको गांधी जी का रेखाचित्र बनाना चाहिए। भानुमती ने बचपन में ऐसा ही किया था। और जरा सोचिए कि आगे चलकर भानुमती भानु अथैया बनी और सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। ये था

और गीतकार थे। ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया पर भानु अथैया ने आगे विवाह नहीं किया। भानु अथैया ने अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की यात्रा सन 1953 में शुरू की थी।

0: कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार।
1: इसके बाद तो हिंदी सिनेमा में ड्रेस डिजाइनिंग को लेकर उन्होंने एक नई क्रांति ला दी। किसी जमाने में भानु अथैया महिलाओं की पत्रिकाओं के लिए फैशन विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी, फिर वो परिधान डिजाइनिंग यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में आ गईं। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का नगमा। ये फिल्म आपने देखी ही होगी, इसलिए आंखें बंद करके याद कीजिए इस गाने में थिरकती हुई नादिरा को, जिनके लिए गाउन तैयार किया था भानु अथैया ने ही। और ये कॉस्ट्यूम कितनी बड़ी हिट हुई थी उस दौर में जीने वाले लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

भानु अथैया ने अपने इंटरव्यूज में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा था जबकि डायरेक्टर सेट डिजाइनर और किसी टेलर को लेकर बैठ जाते थे और स्टोरी के मुताबिक कपड़े सिलवा लिया करते थे, लेकिन जब मैं फिल्मी दुनिया में आई तो मैंने ड्रेस डिजाइनिंग को एक पेशेवर रूप दिया। डायरेक्टर्स की बात सुनकर मैंने स्केचेस बनाना शुरू किया और एक्टर्स की पर्सनैलिटी और कहानी की मांग के मुताबिक ड्रेस तैयार करना शुरू किया। अब जरा फिल्म वक्त को याद करते हैं। साधना ने फिल्म वक्त में एक खास ड्रेस पहनी थी, घुटनों तक ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाली चूड़ीदार पजामे वाली ये ड्रेस लोगों के बीच बहुत मशहूर हुई और लड़कियों ने इसे अपनाकर उस जमाने का फैशन बना दिया था। कुछ फेर बदल के साथ आज भी इस तरह की पोशाक चलन में नजर आती है। तो फिल्म वक्त का साधना पर फिल्माया गया ये गाना सुनिए।

अब जरा फिल्म आम्रपाली की बात कर ली जाए। फिल्म आम्रपाली एक कॉस्ट्यूम ड्रामा था। ये कहा जा सकता है कि इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करना एक चुनौती थी। भानु अथैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग से प्रेरणा ली। बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहने जाने वाले हल्के गेरुए

इनके कपड़ों को डिजाइन करना आसान नहीं था। इस दौरान इन कपड़ों को पारिजात के फूलों के रंग में रंगा जाता था। इस फिल्म में आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला ने, और उन्होंने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी उनको भानु अथैया ने बड़ा सोच समझकर डिजाइन किया था, कुछ इस तरह से कि स्किन फिटेड ड्रेस होने के बावजूद ये भद्दी न लगे, कहानी के अनुरूप उनमें एक गरिमा हो, एक ठसक हो और एक सजीलापन हो। इसी फिल्म में सुनील दत्त ने मगध के सम्राट का किरदार निभाया था और भानु अथैया ने उनके लिए क्लासिक धोती तैयार की थी। फिल्म आम्रपाली अपनी कथावस्तु वैजयंती माला के अभिनय और उनके नृत्यों के साथ साथ शंकर जयकिशन के संगीत के लिए भी याद की जाती है, और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि फिल्म आम्रपाली को सजाने में एक बड़ा योगदान था भानु अथैया का।

मुथैया की ड्रेस से सजी हुई कई फिल्में आपने देखी होंगी। पता नहीं आपका ध्यान इन फिल्मों में हीरो हीरोइन की पोशाकों पर गया या नहीं गया। सन 1956 में CID, सन 1959 में प्यासा, सन 1960 वहीदा रहमान की खूबसूरती से जगमगा गई सेलुलॉइड की स्क्रीन और इस फिल्म की पोशाकें तैयार की थी भानु अथैया ने, और लोग कह उठे

जादू अथैया की खासियत ये थी कि वो फिल्म के किरदारों और कथानक को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती रहीं। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने राजस्थान की पृष्ठभूमि की कमाल की पोशाकें तैयार की।

सन 1990 में एक बार फिर से राजस्थानी पृष्ठभूमि की पोशाकें तैयार करने का उन्हें मौका मिला। इस बार फिल्म की गुलजार निर्देशित, लेकिन

साल 1964 की तरफ लौटते हैं। वैजयंती माला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, फिल्म संगम। इस फिल्म के लिए क्रेप सिल्क की साड़ियां वैजयंती माला के लिए चुनी गई। जरा इस गाने को याद कीजिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, शंकर जयकिशन की धुन और मुकेश की आवाज, साथ में लता मंगेशकर।

गंगा मैली हूँ या फिल्म मेरा नाम जोकर। इन फिल्मों की ड्रेस डिजाइनिंग के पीछे भानु अथैया की प्रतिभा थी। कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान के लिए भी

अब फिल्म गांधी की बात कर ली जाए। फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का मौका मिला था भानु अथैया को। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए बाकायदा ऑडिशन और टेस्ट लिया गया था और दुनिया भर के लोगों में से भानु अथैया को चुना गया फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सन 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड जीता था भानु अथैया ने, और वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हस्ती बन गई थी। इसके बाद भी भानु अथैया की कला जारी रही थी। आपको बता दें कि जब आमिर खान ने फिल्म लगान बनाई तो उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भानु अथैया को ही सौंपा था। आजादी के पहले का परिदृश्य और ग्रामीण किरदार उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से वो इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी। खासतौर पर उन्हें ये ध्यान रखना था कि फिल्म में ग्रामीण गरीब किरदार हैं जो आजादी के पहले के समय के हैं। खूब रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिल्म लगान

आशुतोष गोवारीकर की फिल्म स्वदेश के लिए भी ड्रेस डिजाइनिंग का काम भानु अथैया ने किया था। भानु अथैया को गुलजार की फिल्म लेकिन और आशुतोष गोवारीकर की फिल्म लगान के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की अपनी इस पूरी यात्रा को उन्होंने एक किताब में संजोया है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। परिधान डिजाइनिंग के शौकीनों के लिए ये

2020 भानु अथैया एक खौफनाक बीमारी से जूझ रही थी। इससे पहले फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान उन्हें लकवा भी लग गया था। उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। 15 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारत की एक सबसे प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर इस दुनिया से विदा जरूर हो गई, पर उनका नाम हमेशा रहेगा। जब भी फिल्म गांधी का जिक्र आएगा, ब्रह्मचारी का, स्वदेश का, लगान का, गाइड का, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा या चौधरी का चांद और हिना जैसी फिल्मों का जिक्र आएगा, भानु अथैया को लोग याद करते रहेंगे, हमेशा याद करेंगे। भारत की सबसे प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम

0: ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर शुद्ध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। पिछले दिनों सेवा ज्योति संकल्प यात्रा के लिए ग्वालियर जिला मुख्यालय स्थित कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन दिया। जनप्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुनकर सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जनप्रतिनिधियों ने ज्योति प्रज्वलित कर यात्रा को रवाना किया। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी के संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर, जिला प्रशासन ग्वालियर और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के बीच समझौता हुआ है। इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मौजूदा संग्रहालय का उन्नयन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए राज्य शासन ने 9,99,00,000 रूपये की राशि स्वीकृत की है। ग्वालियर को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने जा रही है। यहाँ देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है, जहाँ देश विदेश की नामी कंपनियां एक ही छत के नीचे निवेश कर सकेंगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों इस जोन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत जिले के ग्राम कुलैत में जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं, पात्रता आवेदन प्रक्रिया और जन कल्याणकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। यहां 108 ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत किए। जिलाधिकारियों ने आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए निराकरण की कार्रवाई की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों को सभी आवेदनों का सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी अभियान के अंतर्गत घाटी गांव विकासखंड के नयापुरा गांव में भी विकासखंड स्तरीय शिविर लगाया गया। यहां ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में पंचायत सिमरिया टांका, ग्राम पंचायत घाटी गांव और विकास युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 25 आदिवासी बच्चों को स्कूल बैग भी वितरित किए गए। वहीं आंध्रा में आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास शिविर में 300 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 900 छात्र छात्राओं ने मानव रंगोली बनाकर देशभक्ति का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज और ग्वालियर 2047 की आकृति बनाई। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें स्वच्छता ही सेवा, वृक्षारोपण, योग और ध्यान, साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान, वोकल फॉर लोकल, वीर गाथा, सैनिक सम्मान और शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता जैसे कार्यक्रम शामिल है। इसके अलावा अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का भी भ्रमण किया जा रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान और मुख्यमंत्री जन विश्वास सेवा संकल्प के अंतर्गत मद्य निषेध सप्ताह के तहत ग्वालियर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रखने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का संदेश देना था। सेवा संकल्प अभियान के तहत ओडिशा से आए 28 सदस्यीय सोशल मीडिया प्रभावक दल ने ग्वालियर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अवलोकन किया। दल ने शहर के पुरातात्विक महत्व और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण किया। इसी क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त उद्यानिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने ग्वालियर जिले का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न उद्यानिकी गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए किसानों द्वारा आधुनिक तकनीक से की जा रही खेती, फसल उत्पादन, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और पैकिंग कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिले में संचालित उद्यानिकी गतिविधियों की सराहना की और उत्पादन तथा गुणवत्ता बढ़ाने के साथ किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में बात दाताबंदी छोड़ दिवस की। ग्वालियर के किले स्थित दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे में 8 से 10 अक्टूबर को 3 दिवसीय दाताबंदी छोड़ दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश सहित देश भर से श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी ग्वालियर जिले की चिट्ठी। आलेख नवीन श्रीवास्तव का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं, फोन करें, गीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर। आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हाँ, लक्ष्मण बोल रहे हैं।
0: नमस्कार लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में। क्या करते हैं लक्ष्मण भाई आप?
1: अपने ऑटो चलाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऑटो के फेरे कहाँ पर लगाते हैं आप?
1: जब जहाँ का जैसा मिल जाएगा काम वैसे चलते रहते हैं।
0: कौन कौन सी सावधानियाँ रखते हैं ऑटो चलाते समय?
1: देखना है सिग्नल के हिसाब से चलना पड़ेगा।
0: अच्छा लक्ष्मण भाई, हम आपको बता दें कि अपने स्वास्थ्य का हमें इस मौसम में खासतौर से ध्यान रखने की जरूरत है।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी, खांसी, वायरल, इन चीजों के इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं।
1: हाँ।
0: तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब भी जाएं तो अपने आप को सुरक्षित रखें। खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा रख लें, रुमाल रख लें तो बहुत ही बढ़िया रहता है।
1: हाँ।
0: तो आप क्या क्या सावधानी बरतते हैं?
1: हाँ
0: हाँ,
1: इसको क्या है की अपन जब कहीं धूप में है तो अपने इसको डाल देते हैं धूप में।
0: हाँ।
1: कहीं धूल है तो उसमें अपने हाथ में इस्तेमाल करते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और खान पान में भी जरूरत है कि ध्यान रखें हम अपना। तो लक्ष्मण भाई बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: गाना अमिताभ बच्चन का सुना दो।
0: चलिए लक्ष्मण भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
0: सर हम ग्राम लक्ष्मणपुरा जिला टीकमगढ़ से अखिलेश मैन बात कर रहा हूँ। सर
1: अखिलेश भाई, कुछ टीकमगढ़ के बारे में बताएं हमें।
0: सर टीकमगढ़ के लिए तो सर ऐसा है, इसमें सर रेलवे स्टेशन भी है सर, तो इसमें सर अपने यहाँ पास में बगाज माता का मंदिर पड़ता है सर।
1: हाँ हाँ हाँ, हमें ये बताएं अखिलेश भाई, रेलवे स्टेशन बनने से टीकमगढ़ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?
0: सर लोगों पर ये प्रभाव पड़ा सर कि जो वहाँ लोग परेशान होते थे जाने के लिए, तो एक बढ़िया सुविधा हो गई सर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है सर।
1: अच्छा, हमें अखिलेश भाई ये और बताएं कि मौसम बदल रहा है तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं आप?
0: सर इसमें एक तो अपन को कोई काम

0: हो तो बाहर ना निकले, समय समय पे पानी पीते रहे।
1: हाँ हाँ,
0: और ये मौसम बदल रहा है तो इसमें सर्दी जुकाम सभी को हो रहा है, तो इससे बचें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: सर राजा हिंदुस्तानी का सुनवा दीजिए सर, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: तो आइए अखिलेश भाई सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: Ben kasama sa agad.
1: Hello.
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते, फोन करेंगे सुनने में स्वागत करते हैं आपका।
2: दिनेश पुरानी नगर पालिका हटा।
1: दिनेश भाई कुछ बताएं अपने बारे में अभी।
2: अभी सर अस्वस्थ चल रहे हैं।
1: क्या हो गया आपको?
2: सर जी जुकाम चल रहा है सर बहुत।
1: देखिए आज हमारा मुद्दा भी यही है कि इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है
2: जी,
1: क्योंकि बदलता मौसम है, तापमान में उतार चढ़ाव आते हैं, पानी में भी कई बार अगर हम देख लेते हैं तो अगर हमने यहाँ वहां का पानी पी लिया तो उससे भी परेशानी हो जाती है। खुले में जो बिखरा है खाना वो अगर खा लिया तो भी परेशानी होती है।
2: सर हम बड़ी सर्दी होती है, सर्दी ऐसी दवाई में ठीक हो, 15 दिन के पहले ठीक नहीं होते।
1: तो कभी डॉक्टर को दिखाया आपने?
2: अपने हटा में MBBS को दिखाया था।
1: हाँ हाँ,
2: तो बोल रहे थे 1-2 दिन निकाल जाना दो।
1: हाँ हाँ,
2: अभी दवा मत करो।
1: तो दिनेश भाई जरूरत इस बात की है कि आप खूब सतर्क रहें, सावधान रहें, कहीं भी बाहर का खाना, खुले में बिकता हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं और ना ही बाहर का पानी पिए।
2: बाहर को तो ठीक है सर, आप साथ खाना पीना तो फुल्की भी खा ले, में कोई चाट भी खा ले, में कुछ जो बाजार को, बस वही तो दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम।
1: हाँ, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: अवतार फिल्म को सुनने, नवरात्रि की
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म अवतार का ये गीत।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
3: मार

0: गर्मा गर्म 287 चाय और साथ में मिस्टर 287 क्रिस्पी कुकीज,
1: चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम का छोटा सा ब्रेक,
2: मिस्टर 287 कुकीज और 287 चाय,
1: स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
3: हेलो
4: जी, स्वागत है आपका फोन करें गीत सुने में।
3: सर नमस्कार।
4: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: धर्मेंद्र अरवाल बोला सर, ग्राम बरौदिया बल्लभ से। सर अभी तो 16 दिन कट रहा है, खेती किसानी हार में बैठे हैं।
4: अच्छा अच्छा,
3: हमने की फोन लगा ला पर एक बात कट है।
4: अच्छा।

0: जी जी सही बात है धर्मेंद्र भाई, इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है।
1: जी सर, अभी क्या है कि नया पानी है,
0: हाँ हाँ,
1: तालाबों में घर में,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो वो नहीं पीने चाहिए पानी, घर से लाने चाहिए,
0: हाँ,
1: साफ सुथरा पीने चाहिए, जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही,
0: पानी को छान लें, उबाल लें और प्रयास करें कि बाहर जो खुले में बिकने वाले सामान हैं उनको कम से कम खाएं, या जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ना खाएं।
1: जी सर, अभी बहुत बाहर चल रहा है जुकाम को,
0: हाँ, और जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है तो नजदीकी चिकित्सालय जाएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
1: जी सर
0: जी, तो धर्मेंद्र भाई बता दें गाना कौन सा सुनना चाहा है आपने?
1: आज गाना सुनो राम लखन को, मेरे लखन ने बड़ा दुख दीना।
0: सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म राम लखन का ये गीत।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर,
1: स्वागत है आपका। फोन करेंगी सुने में
0: विराम किशनपुरा से बोल रहे राजा हर बात।
1: राजा क्या करते हैं किशनपुरा में?
0: सर खेती करते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: और सोयाबीन की कटाई चल रही है।
1: राजा भाई हमें ये बताएं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं इस मौसम में जब मौसम बदलता है?
0: सर अपन को थोड़ा खान पान सही रखना चाहिए, दुकान की जो चीजें नहीं खाना चाहिए ज्यादा।
1: हाँ हाँ,
0: और अपन घाम में जाते हैं कटाई करने के लिए तो अपन तौलिया गमछा से अपना सर बांध लें और अपनी कटाई को जो साधन है जैसे हसिया है तो अपन वो सावधानी से चलाएं। यही है सर, और खान पान में जरूर ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
0: जी सर।
1: बताएं गाना कौन सा सुनवा हम आपको?
0: गाना सुनवा दियो सर, देवी गीत सुनवा दियो आशा मूवी को।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म आशा का ये गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
1: सर सागर धर्मश्री से बोल रहे सर, सुमित पटेल।
0: धर्मश्री में कहाँ रहते हैं आप?
1: सर जी धर्मश्री में हम रहते हैं सर, ये गोलक हुआ है सर, यहाँ पे जो दिव्यांगों की वो स्कूल बनी है विद्यालय।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: वहीं पे है सर, हमारे घर में किराने की दुकान है, पापा लोग चलाते हैं सर, हम पढ़ाई करते हैं वहीं पे।
0: अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं इस मौसम में जब बदल रहा है मौसम?
1: सर स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, जैसे सर खान पान है सर,

0: जैसे अपन को कम से कम तेल की चीजें कम खानी चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: और जैसे सर अपन हार खेत में जाते हैं कटाई, जैसे अभी सोयाबीन की कटाई लगी है सर।
1: हाँ हाँ।
0: तो चुमक पत्ते तौलिया या फिर मतलब अच्छे रहन सहन से रहना चाहिए सर।
1: तो बताएं हमें सुमित, गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
0: सर सबसे पहले तो आपके लिए और आपकी आकाशवाणी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं।
0: सर मूवी का तो हमें नहीं नाम मालूम मोहम्मद रफी की आवाज में, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली,
1: फिल्म का नाम है सुहाग।
0: जी सर।
1: तो आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर फिल्म सुहाग का ये गीत।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार,
0: जैसे करता बोल रहे हैं आप?
1: जी बिल्कुल, अपना नाम बताएं।
0: अनिकेत लोधी, जिला सागर, तहसील गढ़ा कोटा, ग्राम टड़ा।
1: अनिकेत, क्या करते हो आप?
0: ढोलक बजाते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: ढोलक के अलावा थोड़े गाना गाते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हो?
0: स्वास्थ्य का ध्यान तो वही, खाते पीते तो ढंग से रहते हैं।
1: हाँ, पानी भी अच्छा पिए और बाहर का चाट समोसा पकौड़ी पुलकी इस मौसम में ना खाएं।
0: जी जी सर।
1: तो बताएं, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: हमें सुनाए आप तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
1: अनिकेत, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म धड़कन का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे अरुण जायसवाल, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

प्रोग्राम करें गीत सुने। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज दिन बुधवार को हेलो ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग दोपहर 1 बजे से की जाएगी। श्रोता इस कार्यक्रम में फोन लगाकर स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से कृषि और पशुपालन से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2408 45, सागर का स्टडी कोड है 07582। तो श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का आज दोपहर 1 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

0: यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 MHz पर। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलुरु से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल

इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। ये चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि ये काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं साथियों। वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे। यानी आज की पेंसिल का ढांचा यही से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB। तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक। इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओ, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते

अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।

0: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
1: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
0: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
1: वो तो ठीक है साहब,
0: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
1: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
0: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
1: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
0: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।

0: कारण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: मां।
2: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है मां। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं ने जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो।

0: पर फिर से हमला करेंगे। शेरसर्ट।
1: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने

0: ऑफिस से फिर आदेश आया, अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
1: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम दूंगा।
2: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। सर
1: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। त्याग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
1: ना तो सिर्फ निशाना साधो।
4: ठीक है जी।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
1: फायर।
3: सर
1: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट
4: जी।
1: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
1: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
2: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई।

समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम।

0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
2: उमंग, उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:30 होने को है। थोड़ी देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में आप सुनिए शुभा मुदगल की आवाज में ये महान फिल्मी रचना।

यह अवस्थी शुभा मुद्गल की और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गाया जी।

सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बनी म्यूजिक अरेंजर और फिर बनी म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम

0: मैं निकला ओ गड्डी लेके
1: दास्तान बेमिसाल संगीत की

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूतियों पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा।
0: अपने संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन